0: ആകാശവാണി സമയം 5 മണി.
1: ഈ ആകാശവാണി കാ തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്ര ഹെ ആജ് കെ ഹിന്ദി പ്രസാരണ മേ ആയി സുൻതേ ഹെ ഡോക്ടർ അശോക് ബി കി വാർത്ത ഹിന്ദി കെ മഹാൻ കഥാകാർ മുൻഷി പ്രേംചന്ദ്.
2: दिन मैं एक मजदूर हूँ, जिस दिन कुछ न लिखूं मुझे रोटी खाने का कोई हक नहीं. ये साहित्य के एक मशहूर लेखक का वक्तव्य है, जिनका जन्म 145 साल पहले 31 जुलाई 1880 को बनारस शहर के पास लम्ही नामक गांव में एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था. लम्ही बनारस से 4 मील दूर स्थित गांव है. उनका नाम धनपत राय था. घर में चाचा प्यार से नवाब राय कहकर पुकारते थे. हिंदी साहित्य का इतिहास उस महान लेखक को प्रेमचंद की संज्ञा से पुकारने लगा. प्रेमचंद का बचपन कठिन परिस्थितियों में बीता था. प्रेमचंद के 8 वर्ष की अवस्था में माता आनंदी देवी चल बसी. 11 वर्ष होते होते दादी भी चल बसी. 16 वर्ष की अवस्था में उनके पिता अजायब रॉय की भी मृत्यु हो गई. उस जमाने में भारत की ग्रामीण व्यवस्था हिल रही थी. उसका आर्थिक और सामाजिक ढांचा बदल रहा था. 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में प्रेमचंद ने हिंदी कथा साहित्य को राजनीति एवं सामाजिकता से जोड़कर जन आंदोलन का हिस्सा बनाया. वे हिंदी के मौलिक उपन्यासकार बने. प्रथम बार प्रेमचंद के उपन्यासों में जन सामान्य को वाणी मिली. उपन्यास मनोरंजन का घिलवाट न रहकर जीवन सत्य को उजागर करने वाला हथियार बन गया. प्रेमचंद के कथा साहित्य में भारतीय किसान और मध्यवर्गीय व्यक्ति की अनगिनत जीवन समस्याएं कलात्मकता के साथ उद्घाटित हुआ. तत्कालीन उत्तर भारतीय समाज के उदात अनुदात एवं क्षुद्र सुंदर चित्र उनमें अंकित हुआ. प्रेमचंद जीवन पर्यंत लिखते रहे. अपने 36 वर्ष के साहित्यिक जीवन में प्रेमचंद ने 1 दर्जन उपन्यास, 300 से ज्यादा कहानियां, 2 नाटक आदि लिखे. उनकी रचनाएं पढ़कर जनता के दिल में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़कर आजादी पाने की उमंग भर गई. प्रेमचंद हर तरह की शारीरिक और मानसिक गुलामी, रूढ़ी परंपरा आदि से घृणा करते थे. उससे उत्पन्न दुख दर्द से जन सामान्य की मुक्ति चाहते थे. शुरू से आखिर तक उनके साहित्य की यही ध्वनि रही. प्रेमचंद की 300 से ज्यादा कहानियां मानस सरोवर नामक 8 घंटों में संग्रहित हैं. संग्राम, करबला नामक 2 नाटक भी प्रेमचंद के हैं. इन सब के बावजूद हिंदी उपन्यास को प्रेमचंद ने नया मोड़ दिया. आधुनिक हिंदी उपन्यास की नई प्रवृत्तियों का प्रारंभ प्रेमचंद से होता है. उनके उपन्यासों में जो समस्याएं उठाई गईं, वे व्यक्तिगत या पारिवारिक न होकर समाजव्यापी रहे. प्रेमचंद ने भारतीय नागरिक एवं ग्रामीण जीवन के अनगिनत सवालों पर मानवतावादी नजर से विचार किया. इसलिए उनके उपन्यास जनता का साहित्य बना. उनमें भारतीय सामाजिक जीवन का प्रतिबिंब देखा गया. ग्रामीण समाज, सामाजिक कुरीतियां, धार्मिक पाखंड, अछूत समस्या, राजनीतिक आजादी जैसे जीवंत विषय उनका लक्ष्य रहा. प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास को तिलस्मी, अय्यारी और काल्पनिक धरातल से मुक्त करके सामाजिक यथार्थ का रूप दिया. उनके उपन्यास में भारत के तत्कालीन राजनीति

राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों का इतिहास देखा जा सकता है। उन उपन्यासों में नजर डालना प्रेमचंद के साहित्यिक जगत को उजागर करने में सहायक रहेगा। प्रेमचंद का पहला उपन्यास सेवा सदन है। सेवा सदन समाज सुधारक की प्रवृत्ति को उजागर करने वाला उपन्यास है। उपन्यास का कथ्य नारी जीवन पर आधारित है। सेवा सदन की मुख्य समस्या भारतीय नारी की पराधीनता है। प्रेमचंद ने पुरानी सांस्कृतिक परंपराओं को तोड़ते हुए वर्तमान समाज में नारी पराधीनता को बीभत्स रूप से चित्रित किया है। प्रेमचंद का दूसरा उपन्यास वरदान है। देशभक्ति एवं समाज सेवा को दृष्टि में रखकर प्रेमचंद ने वरदान उपन्यास लिखा है। उपन्यास की मूल कथा प्रेम और कर्तव्य के द्वंद्व पर आधारित है। इसमें देशभक्ति, समाज सेवा, सच्चा प्रेम एवं सच्चरित्र पर प्रेमचंद के सम्यक रूप देखने को मिलता है। प्रेमचंद का तीसरा उपन्यास प्रेमाश्रम है। प्रेमाश्रम उपन्यास की कथा वस्तु किसानों की समस्या को उद्धृत करते हैं। भारत की सामान्य जनता का जागरण और अपने हक के लिए लड़ाई भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रमुख अंग है। इस जागरण पर लिखित प्रथम श्रेष्ठ उपन्यास के रूप में प्रेमाश्रम एक महत्वपूर्ण रचना बनती है। रंगभूमि प्रेमचंद का बृहद तथा महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसकी विशेषता भारतीय समाज के निम्नतर चमार जाति के एक अंधे एवं दुबले पतले भिखारी सूरदास को अपने उपन्यास का प्रधान पात्र मानकर लिखी गई है। प्रेमचंद हिंदी साहित्य में ही नहीं परंतु भारतीय साहित्य एवं विश्व साहित्य के प्रांगण में इस उपन्यास से अमर स्थान प्राप्त कर चुके हैं। प्रेमचंद एक महान मानवतावादी कथाकार हैं। रंगभूमि का प्रधान पात्र सूरदास सहनशीलता, आत्मनिर्भरता, त्याग एवं क्षमाशीलता से ओतप्रोत पात्र है। प्रेमचंद का उपन्यास कायाकल्प दो वर्गों की कहानी है। एक तरफ जागीरदार और रानियां तो दूसरी तरफ कृषक जनता है। कायाकल्प किसानों का नहीं होता बल्कि जगदीशपुर की रानी देवप्रिया का होता है। इस उपन्यास के द्वारा मुंशी प्रेमचंद रियासतों के राजाओं की विलासिता, कामुकता, बहुपत्नी प्रथा तथा मानवीय गुणों के अभाव से जनता पर किए जाने वाले अत्याचारों का सजीव चित्र प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया है। निर्मला प्रेमचंद का अनमोल उपन्यास है। इसका कथ्य अनमेल विवाह और दहेज समस्या पर आधारित है। अपने कतिपय बृहत उपन्यासों में देश की कई महत्वपूर्ण समस्याओं का विश्लेषण करने के पश्चात प्रेमचंद ने इस छोटे से उपन्यास में भारतीय नारी की समस्या की ओर संकेत किया है। निर्मला को दहेज और अनमेल विवाह की बलिवेदी पर चढ़ाई जाने वाली एक युवती की करुण कहानी बताया गया है। प्रतिज्ञा उपन्यास विधवा समस्या के समाधान के रूप में लिखित एक सामाजिक रचना के रूप में प्रतिबिंबित करता है। भारतीय समाज की सबसे पीड़ित विधवा नारी के उद्धार की दृष्टि से यह उपन्यास लिखा गया। इस उपन्यास में विधवा समस्या को रूढ़िगत एवं आध्यात्मिक दृष्टि से न देखकर जीवन और रोटी दाल की समस्या को हल करने के प्रयास के रूप में देखा गया है। गबन उपन्यास एक मध्यवर्गीय समाज के आर्थिक वैषम्य की समस्या तथा नारी की आभूषण प्रियता की लालसा को दिखाता है। कर्मभूमि उपन्यास में प्रेमचंद ने तत्कालीन सामाजिक तथा राजनीतिक समस्याओं पर सम्यक प्रकाश डाला है। सन 1930 में नमक सत्याग्रह तथा किसान आंदोलन, अछूतोद्धार, मंदिरों में हरिजन का प्रवेश, अस्पृश्यों में शिक्षा का प्रचार आदि विभिन्न समस्याओं पर इस उपन्यास के माध्यम से प्रेमचंद ने प्रकाश डाला है। गोदान प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास है और यह उपन्यास आदर्शोन्मुख
यथार्थवाद।

आदि है। गोदान को एक महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा जाता है। साथ साथ राष्ट्रीय उत्कर्ष का संस्कार गोदान से जोड़ा गया है। इसे भारतीय जीवन के कृषक जीवन का महाकाव्य घोषित किया है। मंगलसूत्र प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। उन्होंने ये उपन्यास बीमारी की हालत में लिखना शुरू किया था। इस उपन्यास के सिर्फ 4 परिच्छेद ही वे लिख पाए कि मृत्यु ने उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी। प्रेमचंद के साहित्य में गांधीवादी विचारधारा की झलक दिखाई देती है। हरिजन जीवन, अनाथालयों की स्थापना, कृषि संस्कृति, श्रम की प्रतिष्ठा, नारी सम्मान, धार्मिक सहिष्णुता, मूल्यों का संघर्ष सब इसके प्रमाण है। अभाव, उत्पीड़न, शोषण, अन्याय, अत्याचार और गरीबी के खिलाफ प्रेमचंद की रचनाएं सशक्त हथियार हैं। प्रेमचंद विश्व साहित्य के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। जिस रचनाकार पर काल की सीमाओं को लांघकर लिखा पढ़ा जाएगा, प्रेमचंद हिंदी के कालजयी रचनाकार हैं। 31 जुलाई प्रेमचंद का जन्म दिवस है। हर साल ये दिन भारतीय साहित्य के इतिहास में एक अनमोल दिन है। इसी दिन प्रेमचंद की जयंती मनाई जाती है।

0: നുള്ളി നോവിക്കാതെ എന്ന ചിത്രത്തിനുവേണ്ടി പൂവച്ചൽ ഖാദർ വരികളെഴുതി രാജാമണിയുടെ സംഗീതത്തിൽ യേശുദാസ് പാടിയ ഗാനമാണ് ഇപ്പോൾ കേട്ടത്. അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ സമാചാർ സന്ധ്യ, തുടർന്ന് ന്യൂസ് അറ്റ് 9 ഡൽഹി റിലേ.
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा. मुख्य समाचार. लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा जारी. विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान. सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया. महाराष्ट्र, बिहार और असम में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया. पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए. भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने की कवायद बताया. जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंचा. ओडिशा में मूसलाधार बारिश के कारण प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का कहर. छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट. और खेलों में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीता. अब समाचार विस्तार.

0: से लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त हो जाने चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था।
1: यू मस्ट कॉम्प्लीमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड दिस गवर्नमेंट।
2: कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय देना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार ने उस अधूरे कार्य को पूरा किया है जिसे पहले ही पूरा किया जाना चाहिए था। वर्ष 2024 में ये विधेयक विद्यार्थियों को ये विश्वास दिलाने के उद्देश्य से लाया गया था कि उनका भविष्य सुरक्षित है। 2024 के अधिनियम के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर अब ये संशोधन लाया जा रहा है, ताकि कानून को और अधिक सख्त बनाया जा सके तथा शीघ्र न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
1: टू एंश्योर स्पीडी जस्टिस।
0: कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार नहीं करने का आरोप लगाया।
3: इस संशोधन वाले बिल का विवरण पढ़ के साफ साफ पता चल जाता है कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक पर चिंता व्यक्त की। तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी निष्पक्ष परीक्षा का हकदार है। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी के लावू श्रीकृष्ण देवरायलू ने कहा कि सरकार ने पेपर लीक मामले को स्वीकार कर लिया है और आवश्यक बदलाव करने को तैयार है। शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने कहा कि ये ऐतिहासिक विधेयक देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य आकांक्षाओं और प्रयासों को सम्मान देगा।
4: मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी सरकार ताकत के साथ खड़ी है। पेपर लीक की घटनाओं के तुरंत बाद हमारी सरकार ने रिकॉर्ड समय में ऐसे कड़े कानून बनाए जिससे आने वाले समय में पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो। हमारा लक्ष्य सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं है, बल्कि बच्चों का कीमती साल बचाना भी है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित हुई।
5: पिछले 6 दिनों से बार बार सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद आज लोकसभा में भोजनावकाश के बाद कामकाज सुचारू रूप से चला। पहली बार कार्यवाही स्थगित होने के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। इससे पहले जब सुबह 11 बजे दोनों सदनों की बैठक शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। जब राज्यसभा की बैठक पुनः शुरू हुई तो एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। वहीं विपक्षी सदस्यों का विरोध जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। इस बीच महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने के आदेश दिए गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया है कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। एफआईआर वापस लेने की प्रक्रिया संबंधित अदालतों की अनुमति से शुरू की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।
1: हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहां चल रहे लीपापोती वाले इलेक्शन पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहां के लोगों का मानव अधिकार का हनन को छिपाने का प्रयास है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ओडिशा बंदरगाह पर MV AGN रागनार जहाज पर हुए हमले में लापता हुए भारतीयों की तलाश जारी है।
1: ओडिशा बंदरगाह के पास में जो हुई थी उसमें 4 भारतीय नागरिक उस पे सवार थे। 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और 2 अभी भी लापता हैं। छानबीन चल रही है उनके लिए और वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं उनसे हम लोग संपर्क में हैं। साथ ही साथ 2 भारतीय जो लापता हैं उनके परिवारजनों के साथ में भी हम लोग संपर्क साधा है।
0: इस वर्ष जून महीने में भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीनों के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंच गया। आज जारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने में विनिर्माण क्षेत्र में 7.8 जबकि बिजली और गैस आपूर्ति क्षेत्र में 10.6% की वृद्धि हुई। जलापूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन में 6.1 और खनन तथा उत्खनन क्षेत्र में अपेक्षाकृत धीमी गति से 1% की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने इस वर्ष 1 अगस्त से 30 नवंबर तक देशभर के चीनी व्यापारियों पर भंडारण सीमा लागू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकना तथा उचित मूल्य पर चीनी की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करना है। सभी व्यापारियों को अपने पास उपलब्ध चीनी के भंडार की घोषणा करनी होगी और खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर प्रत्येक सप्ताह स्टॉक को अपडेट करना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के आज 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने 5 स्मृति पुस्तकों का विमोचन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस उच्च संवैधानिक पद को महज सम्मान नहीं बल्कि एक गहन जिम्मेदारी बताया।
2: राज्यों की यात्राओं के दौरान युवाओं से मिलती हूँ तो मैं उन्हें प्रेरित करती हूँ कि वे नैतिक मूल्यों से जुड़े रहें और देश एवं समाज की उन्नति के लिए कार्य करें। महिलाओं से मेरा आग्रह होता है कि वे स्वावलंबी बने और आत्मविश्वास के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। जनजातीय समुदाय के लोगों से संवाद करते समय अनुरोध करती हूँ कि वे अपनी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करें।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ओडिशा में लगातार मानसूनी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: उड़ीसा में लगातार हो रही मानसून की बारिश की वजह से प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है जिससे बाढ़ का संकट और गहराता जा रहा है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उड़ीसा के सुंदरगढ़, संबलपुर, बरगढ़ और झारसुगुड़ा जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है जबकि 13 अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट वाले जिलों में बचाव और आपातकालीन तैयारियां के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की टीमें तैनात की गई है। राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रकाश दास, आकाश समाचार, भुवनेश्वर।
0: केरलम के 10 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
4: केरल में भारी वर्षा की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य के 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले केवल 6 जिलों में येलो अलर्ट लागू था लेकिन शाम तक विभाग ने 4 और जिलों को अलर्ट की सूची में शामिल कर दिया है। विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। ऐसे में लोगों से सतर्क रहने तथा जारी परामर्श का पालन करने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए इस महीने की 31 तारीख तक

मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। दिल्ली सरकार ने आज महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से 2500 रुपया प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का पोर्टल अगले महीने की पहली तारीख से पंजीकरण के लिए खोला जाएगा। भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इससे रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों की इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की। और अब खेल खबरें। निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में

0: विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लो ने कांस्य पदक जीत लिया है। पदक तालिका में भारत एक स्वर्ण, एक रजत और दो कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में धावक विशाल टीके और तैराक श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में 13वें स्थान पर रहते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। सेमीफाइनल देर रात खेला जाएगा। वहीं धावक विशाल टीके ने पुरुषों की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में पदक की उम्मीद बनाए रखी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आज श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी। रविंद्र जडेजा की टीम में वापसी हुई है। श्रृंखला का पहला मुकाबला 15 से 19 अगस्त जबकि दूसरा 23 से 27 अगस्त के बीच खेला जाएगा। आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एम्स नई दिल्ली और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज के सहयोग से स्ट्रोक के बाद होने वाले वाचाघात एफेसिया के लिए मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी का पहला हिंदी संस्करण विकसित किया है। ये एक संगीत आधारित उपचार है जो स्ट्रोक के बाद ठीक हुए लोगों को दोबारा बोलने की स्थिति में लाने में मदद करता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा जारी। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र, बिहार और असम में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने की कवायद बताया। जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंचा। और खेलों में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लो ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Lok Sabha discussing bill proposing stricter punishment and setting up of fast-track courts in paper leak cases. Government says new legislation reflects resolve to protect students' future. Opposition stresses on wider reforms. Supreme Court orders release of minor students arrested during protests on NEET paper leak issue. Maharashtra, Bihar and Assam orders withdrawal of cases against students. 20 people killed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir in firing on protesters. India terms so-called assembly polls in POJK a cosmetic exercise to camouflage illegal occupation. Industrial output growth hits 23-month high of 7.3% in June. Odisha faces flood fury as heavy rains swell major rivers. Red alert for extremely heavy rainfall over Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Vidarbha region for next 2 days. And at ISSF Shooting World Cup, Indian pair of Sonam Uttam Maskar and Himanshu Dhillo clinch bronze medal in 10-meter air rifle mixed team event. And now the news in detail. The Lok Sabha is holding discussion on the bill proposing stricter punishment and setting up of fast-track courts in paper leak cases. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. Moving the bill, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions Dr. Jitendra Singh said the new legislation reflects government's resolve not to allow anyone to compromise with the future of the youth of the country.
2: You must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished. In 2024, this bill was brought in to reassure the students that their future is safe. So we learned from the experience of the